में मगर घर बोला बोली इन बातें से सफा इन बात से मम मैं चलो ना इधी कोई सुन मरण न वाले आते अन्य चले ही आते के ना है चाबी ने दिन दोरो बता कौन फोगुले उन्हें ना दिलो हाथ का सतुले जो बनन लो दिल है कौन भी लोग कर दिए तो रोक था अरे कहीं करा दे नफरत को ना अब्दुल हाल था अब्दुल यरक